हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। आज सोमवार है, सकसम्मत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद विविध भारती के कार्यक्रम वंदन वार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएस

0: एफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदनवार में पहले सुनिए आज का चिंतन। मधुर सुसंस्कृत और अच्छी तरह से बोली गई वाणी जीवन में हर पक्ष में कल्याणमय होती है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए झरोखा में आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 234। 6:45 पर संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्रे से बातचीत सुनवाई जाएगी। संगीत सरिता का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7 बजे गुनगुनाइए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम है राही प्यार के। 8 बजे समाचार और 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे दिन में 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। आज के फनकार 9:30 पर आज सुबह ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। इस कार्यक्रम को आप आज रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दस बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम होगा। 12 बजे समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। दिन में 1 बजे से सुनिए सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार सुनवाए जाएंगे और 2:30 पर सदाबहार नगमों का आनंद लीजिए। सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होगा 3 बजे से। 4 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म उलझन के गाने सुनवाए जाएंगे। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। लेखक हैं महावीर सिंघल और निर्देशक हैं आनंद किशोर माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 8:45 पर समाचार संध्या सुनिएगा। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात।

चार बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। ये था आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती। कुछ ही देर में कार्यक्रम श्री राम चरितमानस पाठ।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

0: 입사리다.
1: मित्रों नमस्कार, आइए आज सुनते हैं सुविख्यात गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पवार की ये बातचीत। संगीत सरिता में ये बातचीत वर्ष 1989 में पहली बार प्रसारित की गई।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर प्रभा अत्रे, एक सृजनशील गायिका, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में परंपरा और शास्त्र को परखने वाली एकेडेमिशियन और शिक्षिका। संगीत के विविध क्षेत्रों में प्रभा जी ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। संगीत के साथ साथ आपने उच्च शिक्षण भी पाया है। आप साइंस और लॉ के ग्रेजुएट हैं तथा संगीत में आपने डॉक्टरेट भी की है। प्रभा जी नमस्कार।
3: आपको और हमारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
2: प्रभा जी, पढ़ाई लिखाई और संगीत दोनों एक नदी के दो किनारों के समान हैं। एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ संगीताभ्यास। जैसा कि आप BSc लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने संगीत को ही अपने जीवन का माध्यम क्यों चुना? क्या आपके घर में संगीत का माहौल पहले से था?
3: जी नहीं, मेरे परिवार में संगीत किसी ने सुना तक नहीं था। मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही शिक्षण के क्षेत्र में थे
2: जी।
3: और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। ये संजोग की बात है कि माँ की बीमारी के कारण संगीत ने मेरे जीवन में प्रवेश किया
2: जी।
3: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलाकार बनना कुदरत ने पहले से ही तय किया था और यही कारण है कि मैंने अपने आप को संगीत के प्रति अर्पित किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं इसकी लायक बनी रहूँ।
2: प्रभा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी गायन शैली एक स्वतंत्र है, तो इससे क्या मतलब है, अथवा एक परंपरा का जो निर्वाह करते हैं, इस विषय में कुछ कहेंगे?
3: जी, संगीत में परंपरा और शास्त्र का बहुत महत्व है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन परंपरा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है, अनुकरण नहीं है। परंपरा स्वयं काल के अनुसार नित्य नवीन रूप लेती है
2: जी।
3: अगर वो कहीं रुक गई तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। आज का निसर्ग बदला हुआ है, आज की जीवन पद्धति बदली है, तो फिर कला को भी कुछ बदलना जरूरी है। परंपरा के नाम से हम कितनी ही अनवांटेड और गलत बातें अपनाते हैं और उन्हें छोड़ते भी नहीं। हर कला को उस काल के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। संगीत के बारे में जो भी विचार मैंने आज तक सामने रखे हैं, उनके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है। ये दृष्टिकोण मुझे साइंस और लॉ ने दिया है।
2: बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। प्रभा जी, कलाकार तो सदैव स्वतंत्र रहना पसंद करता है, यानी उसका संपूर्ण जीवन अथवा समय कला साधना को समर्पित होता है। लेकिन आप अपनी कला साधना के साथ साथ, जैसे कुछ समय आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रहीं और आजकल SNDT विद्यापीठ में प्रोफेसर और संगीत विभाग के प्रमुख हैं, और इसके अलावा भी स्वरश्री रिकॉर्डिंग कंपनी में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं
3: जी।
2: तो ये सब कुछ करते हुए संगीत की साधना में कुछ बाधा नहीं आती?
3: जी नहीं।
2: कैसे निभा पाती?
3: ये सब इस दृष्टि से कि संगीत से जुड़े हर माध्यम का अनुभव संगीत के विकास में सहायक है। कलाकार को जितना अधिक अनुभव होगा, उतनी ही उसकी कला परिपूर्ण होगी। सच पूछिए तो संगीत की साधना के लिए 24 घंटे भी पूरे नहीं, लेकिन ये साधना विविधांगी होना जरूरी है। प्रत्यक्ष गाना बजाना तो प्रमुख है ही, लेकिन साथ में अच्छा संगीत सुनना, संगीत ग्रंथ पढ़ना, संगीत के बारे में बोलना, संगीत के ऊपर लिखना, चिंतन करना और पढ़ाना, ये सब बातें क्रिएटिविटी को ताजा रखने के लिए आवश्यक है। जब तक हमारे

0: रास्ता स्पष्ट नहीं है
1: जी,
0: तब तक हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते।
1: अच्छा प्रभा जी, अब आपकी गायन शैली के बारे में कुछ बात करें कि सरगम आपकी गायन शैली का एक सुंदर अंग है।
0: हाँ।
1: और आपके डॉक्टरेट के प्रबंध का विषय भी सरगम रहा है
0: जी,
1: तो सरगम के बारे में आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहेंगी?
0: जरूर। सरगम का अर्थ है स्वरों के नाम, जैसे सारे गम मारे सा, इनको लेके स्वराकृति को पेश करना। भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत को साकार करने में आलाप, तान और बोल यानी शब्दों का प्रयोग होता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है और कार्य अलग अलग है। आलापों का सौंदर्य तानों में नहीं और बोलों का कार्य आलाप नहीं कर पाते। इसी प्रकार सरगम का अपना अपना सौंदर्य है और अलग कार्य भी है जो आलाप, तान या बोल नहीं कर पाते। और इसीलिए ख्याल से लेकर डिस्को तक सभी संगीत प्रकारों ने आज सरगम को अपनाया है।
1: प्रभा जी, आप तो शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं
0: जी,
1: क्या फिल्म संगीत और गजलें वगैरह भी सुनना या गुनगुनाना पसंद करती हैं?
0: अवश्य, संगीत का कोई भी प्रकार अपने आप में सुंदर ही होता है
1: जी।
0: उसको खराब करता है कलाकार।
1: अच्छा।
0: फिल्म संगीत में देखिए लता जी और आशा जी जैसे कलाकार है, उनके संगीत को खराब कहना या चीप कहना ये कहने वाले की ना समझ ही होगी।
1: बिल्कुल ठीक।
0: मैं खुद ख्याल ठुमरी दादरा तो गाती ही हूँ, लेकिन भजन और कभी कभी गजलें भी गाती हूँ। हर संगीत प्रकार की अलग अलग ट्रेनिंग है, साधना है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत सीख लिया तो सब कुछ आ गया।
1: प्रभा जी, शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा आम लोग फिल्म संगीत या गजलों को क्यों अधिक पसंद करते हैं?
0: पहली बात तो ये है कि फिल्म संगीत शब्द प्रधान संगीत है और फिर उसके साथ विजुअल यानी दृश्य भी है। शब्द और दृश्य दोनों अपना अपना योग संगीत को देते हैं
1: जी।
0: और इसीलिए वो समझने में आसान हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में शब्दों का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें शब्द एक साधन है, साध्य नहीं
1: जी।
0: और उसमें कोई दृश्य भी नहीं है, खाली सुर और लय की आकृति होती है
1: जी।
0: जो लोग सुर लय की भाषा नहीं समझते उनको शास्त्रीय संगीत कठिन लगना स्वाभाविक ही है, लेकिन संगीत में एक ऐसा गुण है जो मन की गहराइयों को छू लेता है। और इसीलिए संगीत के प्रति अगर प्रेम हो, लगन हो, तो सामान्य श्रोता भी शास्त्रीय संगीत से आनंद प्राप्त कर सकता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब एक प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड म्यूजिक का अभ्यास करने के लिए, आप भारतीय संगीत सीखने के लिए आपको इंडो अमेरिकन और फुल ब्राइट फेलोशिप प्राप्त हुई थी
0: जी,
1: तो ये वर्ल्ड म्यूजिक अभ्यास की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी?
0: विज्ञान ने सारे विश्व के मानव को नजदीक लाया है। आज जागतिक सभ्यता, जागतिक संस्कृति की बातें हम करते हैं, इसलिए एक दूसरे को जानना जरूरी हो गया है और उसके लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता भी हमें महसूस होती है
1: जी।
0: मैं एक संगीतकार हूँ, इसीलिए पूरे जगत के संगीत को जानना चाहती हूँ, उसका अभ्यास करना चाहती हूँ।
1: सुंदर।
0: प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना संगीत है और उसके प्रभाव से अब हम वंचित नहीं हो सकते।
1: बहुत ठीक।
0: जागतिक संगीत के संदर्भ में हमारा संगीत क्या है इसकी पहचान जरूरी है। हमारे संगीत के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए अन्य देशों के संगीत का अभ्यास आज जरूरी हो गया है। एक बात और है, एक कलाकार होने के नाते मेरे जीवन में श्रोता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है
1: जी।
0: श्रोता चाहे भारतीय हो या भारत के बाहर का, कलाकार और श्रोता में अगर दूरी रही तो महफिल उखड़ जाती है
1: जी।
0: अपना समय और पैसा दे के श्रोता महफिल में आता है, उसका आदर करना, उसे संतोष देना ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: तो प्रभा जी, थोड़े से समय में हमने काफी बातचीत कर ली। हम संगीत स्थिरता कार्यक्रम विविध भारती और श्रोताओं की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करते हुए आपसे आगे चाहते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री से राम सिंह पवार की ये बातचीत। उस समय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। अब सुनते हैं विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री का

डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पंवार की ये बातचीत अभी आपने सुनी और उन्हीं का गाया राग अहीर भैरव भी। आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का नमस्कार। आइए सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का गाना। उस्ताद आमिर खान के बोल हैं, माफ कीजिएगा, उस्ताद आमिर खान की आवाज में शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

0: शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बैजू बावरा से, स्वर उस्ताद आमिर खान साहब का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: भूले बिस्से गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त का गाया हुआ फिल्म आर पार का ये गाना। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में भी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का ये गाना मुकेश की आवाज में। मुस्लिम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले के स्वर में तुलसीदास फिल्म का ये गाना। गीत रचना जीएस नेपाली की है और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

शकील बदायूनी का ये रचा गीत सुन रहे थे आप फिल्म आन से, जिसे संगीत से सवारा था नौशाद ने। आवाजें शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की थीं।

शिनचिना की बुबला बू। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। पीएल संतोषी की शब्द रचना को संगीत में पिरोया था सी रामचंद्र ने।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी आपने सुना दिले नादान फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और शुरू में पिरोया था गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम।

नमस्ते रोहतास, कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सचिन के तरफ से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से।

जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वामी विवेकानंद।

सुविचार के उपरांत अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो आज 29 जून है। सन 1888 ईस्वी में आज ही के दिन शास्त्रीय संगीत की पहली ज्ञात की रिकॉर्डिंग की गई थी। तो वहीं सन 1891 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय वन सेवा की शुरुआत हुई। सन 1927 ईस्वी में दो अमेरिकी विमान चालकों लेस्टर मैटलैंड और अल्बर्ट हेगन वर्गर ने

और आज ही के दिन यानी 29 जून सन 1990 ईस्वी में ओजोन परत को बचाने के लिए खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंदन संशोधन को मंजूरी दी गई, तो वहीं सन 1995 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यान स्पेस शटल अटलांटिस पहली बार रूस के मीर अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा। और अब बात करते हैं सन 1966 की, एयर इंडिया की स्थापना की गई जो आज भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है।

29 जून सन 1997 में विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में फ्रैंकफर्ट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जीता था, तो वहीं सन 2005 ईस्वी में भारत और अमेरिका के बीच समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ था। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो सन 1893 ईस्वी में जन्म हुआ था प्रशांत चंद्र महालनोबिस का। वे भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे, जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। सन 1861 ईस्वी में हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासकार देवकी नंदन खन्नी का जन्म हुआ। तो सन 1864 ईस्वी में आशुतोष मुखर्जी का जन्म हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। तो ये थे आज के दिन जन्म लेने वाले महान व्यक्ति। और अब जान लेते हैं आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्ति। तो सन 1961 ईस्वी में सरदार बलदेव सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसके बाद बारी आती है सन 1988 में, आज ही के दिन यानी कि 29 जून को ही गौरी देवी ने दुनिया को अलविदा कहा। वे राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध एक मांड गायिका थी, जिन्होंने मांड गायकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले लोग। कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे रोहतास एवं कैमूर में आयोजित स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक गीत।

इस गीत को सुनने के बाद चलिए अब एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक के गतिविधियों पर। ज़िले में कल यानी कि रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। स्थानीय विधायक अरुण कुमार ने फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। विधायक अरुण कुमार और डीएम दीपक कुमार मिश्र ने जमोरी पंचायत में 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जीवन रक्षक दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत कराई। विधायक ने जिलेवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की।

बिहार सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत भैंसहा के पंचायत भवन कार्यालय बस्तीपुर में पंचायत विकास दिवस शिविर हुआ, जिसमें कि शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। महिला सशक्तिकरण पर फोकस

रखा गया सरकार के शराबबंदी कानून को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों को दी गई।

और अब बात नौहट्टा प्रखंड की। प्रखंड के सभी पंचायतों में कल यानी कि रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया गया। इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा हुई, नई योजनाओं का खाका तैयार किया गया, पेयजल संकट को लेकर भी बात हुई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी सुना गया।

और आबाद कैमूर जिले की मौसम परिवर्तन, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना एवं प्राकृतिक संरचनाओं को बचाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण प्रेमी सह सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले शिवम कुमार ने बताया कि पर्यावरण जानकारों की माने तो पर्यावरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे ही हमारे तत्व की सुरक्षा है। आज विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण जैसे मुद्दे के कारण हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है, इसलिए अपने शुद्ध प्राण वायु के लिए एक पौधा अवश्य लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारी धरती हरी भरी और पर्यावरण संरक्षण हो सके। पैंसठवीं सुब्रतोप मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर कैमूर जिला में जिला स्तर पर मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी शुरू हो गई है। जिला खेल मीडिया प्रभारी ने बताया कि 65वीं सुब्रतोप मुखर्जी फुटबॉल कप टूर्नामेंट को लेकर जिला स्तर पर सभी तैयारियों के लिए आवश्यक बैठक की गई। टूर्नामेंट में बालक बालिका दोनों वर्गों की टीम भाग लेगी। एक विद्यालय से एक ही टीम उतरेगी। बालक वर्ग में अंडर 15 अंडर 17 की प्रतियोगिता होगी, जबकि बालिका वर्ग में अंडर 17 की प्रतियोगिता होगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले खिलाड़ी ही इस कप में भाग ले सकेंगे। विजेता टीम राज्य स्तरीय सुब्रतोप मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। कैमूर के सभी पंचायतों में कल यानी कि रविवार को पंचायत विकास दिवस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, आम लोगों की बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। पंचायतों के समग्र सतत विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई, लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पंचायतों के समेकित विकास पर जोर दिया गया। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही गई।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास में काफ़ी सफलता मिली है। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के साथ अभियान को सफल बनाने में आशाओं की भूमिका भी सराहनीय है। आशाएं सामुदायिक स्तर पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उसे प्रत्येक महीने की 9 तारीख को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ रेफरल इकाइयों पर

श्रोताओं, डायरिया के शुरुआती लक्षणों का ध्यान रखें, माताएं इसकी पहचान कर सकती है। इससे केवल नवजातों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी डायरिया से बचाया जा सकता है। लगातार पतले दस्त होना, बार बार दस्त के साथ उल्टी होना, प्यास बढ़ जाना, भूख का कम जाना या खाना नहीं खाना लक्षणों में शामिल है। मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी के बीच आसपास से बारिश भी हो रही है। डायरिया का होना उन सबसे सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है जिनसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी पीड़ित हो सकते हैं। तो आप डायरिया के कारण बच्चों में अत्यधिक डिहाइड्रेशन होने की समस्याएं बढ़ जाती है। सही समय पर डायरिया के लक्षणों को जानकर उनका उचित उपचार करें, बच्चों को इस गंभीर रोग से आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये था स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

और आप श्रोताओं, एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर,

और दैनिक भास्कर। बिहार में पंचायत विकास दिवस की शुरुआत की गई, यह खबर सभी अखबारों की सुर्खियां रही है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, हर महीने होगा पंचायत विकास दिवस, कानून का राज कायम रहेगा, सम्राट चौधरी। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है, गांव सशक्त तभी बिहार बनेगा समृद्ध, मुख्यमंत्री ने राज्य की 8500 पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का किया शुभारंभ। प्रभात खबर लिखता है कि हर माह के अंतिम रविवार को साथ बैठेंगे प्रतिनिधि एवं ग्रामीण, सुलझाएंगे समस्याएं। हिंदुस्तान ने लिखा है कि बिहार के सभी ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनेगी, सीएम ने पंचायत विकास दिवस की शुरुआत की। प्रभात खबर की सुर्खियां है, अमेरिका ईरान ने फिर शुरू किए हमले, शांति वार्ता खतरे में, और एआई युग में भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा दे रहा नालंदा विश्वविद्यालय, पीएम नरेंद्र मोदी। और पश्चिम बंगाल के सीएम के पीए की हत्या में शामिल मोस्ट वांटेड कृष्णा पर सीबीआई ने घोषित किया इनाम। और राम मंदिर में चंदा गबन के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों के घर एक साथ की गई छापेमारी। हिंदुस्तान के हवाले से खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा में सहरसा में सॉल्वर गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार किए गए, जबकि राज्यभर में 12 गिरफ्तारी की गई है। मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की अटकलें तेज, कोटा के फ्लाईओवर से कूदकर बिहार की छात्रा ने अपनी जान दी, और बिना नोटिस पेंशन से रकम अब नहीं काट सकेगा बैंक।

दैनिक जागरण की सुर्खियां है, राजधानी में उमस भरी गर्मी, 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और घुसपैठियों की पहचान कर देश से बाहर करने की है तैयारी। अमित शाह ने एक साथ अभियान के लिए बुलाई सभी राज्यों की डीजीपी की बैठक और 263 सीआरपीएफ अफसरों को 15 वर्षों के बाद पहली पदोन्नति दी गई और तिरुमला में अनंत अंबानी ने समर्पित किए अपने केस।

दैनिक भास्कर की सुर्खियां हैं, कदाचार के आरोप में राज्य भर में 11 FIR, खगड़िया सहरसा से 15 सालवर हिरासत में, कुल 8 लाख में हुई थी डील, कुल 993 पदों के लिए हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा, और ईरान का ऐलान अगले 30 दिन हरमूज पर हमारा कब्जा, पटना शिक्षा के MLC चुनाव में 6506 वोटर निकले फर्जी, इनका नाम काटा जाएगा। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो अपने रेडियो दोस्त सचिन को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: से प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका

0: और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकार

0: निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइकोल डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 0112371 07 0116 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड

0: तो पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत।

मुहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इसी गीत के साथ ही देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

से हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है 10 नंबरी। इस गीत को सुनने के लिए खत जो हम तक पहुंची हैं, आप हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, असवर हामिद, तहमीना मशकूर, शमा परवीन और आप हैं नाहिद अख्तर। और आप हमारे श्रोता हैं नरहन स्टेट से नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या और विनीता मिश्रा और आप हैं स्नेहलता जैन। और आप हमारे श्रोता हैं नाज मंजिल नौसौल सीतामढ़ी बिहार से, नगर निगम वार्ड 28 से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, हारिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा और आप हैं पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। आप हमारे श्रोता हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूरमहल मसौल से आप हमारे श्रोता हैं हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने 10 नंबरी फिल्म का ये गीत सुना। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज़ों में रफू चक्कर फिल्म का ये गीत, गुलशन वावरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ दतरंगी से। आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा। और आप हमारे श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से, भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार बैरागी। और आप हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगाजला सहरसा से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली फलना झा। आप हमारे श्रोता हैं नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और आप हमारे श्रोता हैं गजेंद्र कुमार निराला।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में प्रकाश मेहरा के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है। आप हैं थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से।

मुन्ना भाई मंसूरी, नजबून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली शबाना और शहबाज।

और आप हमारे श्रोता हैं सरगुजा मैनफेड से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। और आप हमारे श्रोता हैं बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमरी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम। आप हैं मथुरा से जेल रोड वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और आप हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप हमारे श्रोता हैं दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुला कला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

और आप हमारे श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटफटिया झा, उदय कांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।

0: तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय शिक्षा, अत्याधुनिक शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। श्री चौधरी ने आधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, छात्रावास और खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस पहल से पटना साइंस कॉलेज का गौरव पुनर्स्थापित होगा और बिहार को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र

0: शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। महिला हिंसा से जुड़े मामलों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के लिए राज्य के सभी अनुमंडल थानों में महिला कोषांग की स्थापना की जाएगी। इन कोषांगों के माध्यम से महिला उत्पीड़न और हिंसा से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी, त्वरित कार्रवाई तथा पीड़िताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कोषांगों के लिए महिला काउंसलरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य के 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की अब पोषण ट्रैकर के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग मुख्यालय स्तर पर पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित करेगा। कमांड सेंटर के जरिए 6 साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति, वजन, ऊंचाई और समग्र विकास से जुड़ी जानकारी की सतत निगरानी की जाएगी। ये आंकड़े सार्वजनिक डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम लोग देख सकेंगे। बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही ऑपरेटर के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार कदाचार के मामलों में कुल 17 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, ब्लैंक चेकबुक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के आधार पर किशनगंज, गया, भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। वहीं दरभंगा के लहरियासराय स्थित परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के आरोप में एक महिला अभ्यर्थी और उसके भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के मामले में बिहार देश भर में 2रे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के 54,14,000 से अधिक बेरोजगारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें लगभग 26,67,000 सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पंजीकृत युवाओं में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। रोजगार की तलाश करने वालों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रीधारी भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी पेंशन भोगियों को अतिरिक्त भुगतान की राशि अब बिना पूर्व सूचना के पेंशन खाते से नहीं काटी जा सकेगी। आरबीआई ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बैंक को रिकवरी से पहले नोटिस जारी कर अतिरिक्त भुगतान का कारण, पूरी गणना और वसूली की प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नए निर्देशों के तहत पेंशन भोगियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में जहां बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी हिस्सा

0: भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। कल राज्य के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: पूर्व मंत्री हरी सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जगदीश चंद्र की उप महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने इस नियुक्ति को सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने पत्र में श्री सहनी ने कहा कि यह निर्णय वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और केंद्र सरकार की समावेशी सोच को दर्शाता है। पर्यटन विभाग की ओर से पटना के मनेर शरीफ दरगाह में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने किया। इस अवसर पर जाने माने पार्श्व गायक सलमान अली ने सूफी संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास दो चारपहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सभी मृतक पोखरिया गांव के रहने वाले थे और गंगा स्नान के लिए सिमरिया जा रहे थे। हादसे में घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के चोल्हा टोली में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में होमगार्ड के 2 जवान घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपितों को हिरासत में लिया है। क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में एक एएसआई और एक सिपाही घायल हो गए। सिवान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में पोखर में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान में हुए विस्फोट और आग लगने की घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य झुलस गया। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में शराब लदी तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दरवाजे पर बैठी एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव में एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी आंख फोड़ देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के कुदरा थानाध्यक्ष नंदू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मी पर जब्त ट्रकों से बालू उतरवाने और एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी पुल के पास से पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास से ऐसा

एसएसबी और पुलिस की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 87 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध बौद्धिक विरासत का प्रतीक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, साइंस कॉलेज में भौतिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा, मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ऐलान किया। प्रभात खबर ने पंचायत विकास दिवस की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर माह के अंतिम रविवार को साथ बैठेंगे पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण, सुलझेंगी समस्याएं। दैनिक भास्कर लिखता है, सूखा मॉनसून समय से पहले आया पर अब तक 50% कम बरसा पानी, 6 जिलों में हुई सामान्य या उससे अधिक बारिश। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड समस्तीपुर से गिरफ्तार। आज अखबार की सुर्खी है, भारत के क्रिकेट का काला रविवार, आयरलैंड के खिलाफ भारत ने पहली बार सीरीज कमाई, विश्व चैंपियन भारत विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने हक फिल्म का गीत सुना, समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है आपके साथ।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में। अरशद भोपाली के बोल हैं, राम लक्ष्मण का संगीत है, फिल्म का नाम है पुलिस और पब्लिक।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत को सुनने के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: ने गाना सीखा नहीं मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खयाम।
0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते भी कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

के गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: राजेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री

मंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशेल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हौसला। स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, हौसला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त चंदा, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे देश में अनेक दिव्यांग व्यक्तियों ने खेल, शिक्षा, कला, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आज हमने एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की है जो एक मार्शल आर्ट्स

0: योगा टीचर हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में।
1: आपका हौसला कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, मुझे इस प्रोग्राम में बोलने का कुछ मौका मिला।
1: सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
2: मैम, मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं मार्शल आर्ट से हूँ, युद्ध कला सिखाता हूँ बच्चों को, और मैं शाओलिन कुंग फू का एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर हूँ, जो एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है, इसे मैं बचपन से ही अब तक करते आ रहा हूँ। फिलहाल तो मैम मेरा ये रहता उम्मीद कि सभी बच्चे अच्छे करें, और मैं खुद भी अच्छा करता रहता हूँ। मैं मेरा ये कि रहता है कि जिस तरह से मैं कुंग फू कर रहा था, तो उस समय में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया, लेकिन अभी उस समय पहले का दौर कुछ और रहा करते थे, व्यवस्था सही से नहीं रहना, बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज नहीं हो पाना। अभी तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो उस समय हम लोग बस फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग सीखते थे बहुत मुश्किल से, मास्टरों के पास जाते थे, अभ्यास करते थे, तो ये सब रहा है हमारी लाइफ में।
1: आप जैसे कि आपने इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण टीचर के माध्यम से लिया या फिर नेट के माध्यम से लिया, या दोनों तरह से आपने इस शिक्षा को ग्रहण किया?
2: मैम, मैंने जितने भी अभी तक कला हमने अपने अर्जित की है, वो सब के सब मास्टर के थ्रू है।
1: अच्छा, हम आपसे यहाँ आपकी दिव्यांगता के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब कि आपको ये जो दिव्यांगता है कैसे हुई, ये बचपन से ही था या फिर आगे चलकर ऐसी समस्या आई?
2: मैम, मैं पहले बहुत सही था, स्वस्थ था, और बाद में मुझे लग गया, उसके बाद मैं सही से थोड़ा सा दिक्कतें का सामना करना पड़ गया कि जन्म में, मतलब मैं दिव्यांग नहीं था, स्वस्थ ही जन्म लिया था, लेकिन प्राकृतिक के आगे किसकी चलती।
1: यानी कि ये प्राकृतिक दिव्यांगता है या फिर मतलब कि एक्सीडेंट के माध्यम से हुआ?
2: मैम, ये एक्सीडेंट भी नहीं है, ये नेचुरल लग गई है, प्राकृतिक।
1: आपको यह दिव्यांगता कब और कैसे शुरू?
2: ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैम मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय।
1: उम्र आपकी उस वक्त कितनी रही होगी?
2: हमारी उम्र उस समय कम से कम 3 से 4 साल होगी।
1: यानी कि 3-4 साल की उम्र में ही आपको ये दिव्यांगता हो गई।
2: जी मैम।
1: अच्छा, आपने इन कठिनाइयों का सामना कैसे किया? जैसे कि आपको जब ये महसूस हुआ, जे और बच्चों से हटकर अपने आप को महसूस करना, वो एक अलग अनुभव होता है, तो वो आपको अनुभव उस वक्त कैसा फील हुआ?
2: सबसे पहले मुझे उस समय सबसे ज्यादा तकलीफें हुई जब मुझे पैरालिसिस जब मैं हो गया, तो इन कॉजेज में मेरे फादर की डेथ हो गई ना, तो वो एक्सीडेंटल डेथ हो गए, उसको बोलते हैं कि जिसे जब कोई प्रेशर आ जाती है, जब कोई परिवार पर कोई टेंशन आ जाती है, उस समस्या से लेकर उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई मेरे फादर की। और आगे की कहानी जो है हमारी माता जी के जीवनी के आधार पर चला, वो जैसे भी अब परिवार आगे बढ़ती रहती है, हम लोग एक सिंपल साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। और
1: अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
2: हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, अब तो सभी सदस्य की शादी हो गए हैं, तो फैमिली थोड़ा सा बढ़ गई है, जैसे मैं हूँ, माता जी है, और मेरी बहन है
1: जी।
2: मेरे भाई हैं एक, और भी बस इतने ही है, और अभी ये डेट में मेरे 2-3 बच्चे हैं, जैसे 2 बेटे 1 बेटी
1: जी।
2: सब ज्वाइंट फैमिली में, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह के।
1: अच्छा, आपकी इस परिस्थिति के बावजूद परिवार और समाज से आपको कैसा सहयोग मिला?
2: जहाँ तक मुझे पता है कि समाज ने हम मेरे साथ कोई वो जात वो नहीं किया।
1: जैसे होता है ना कि समाज दिव्यांगता को लेकर उसे थोड़ा सा अलग भाव से देखता है।
2: नहीं, हमें तो सभी लोग ने साथ दिया, कोऑपरेट किया, मुझे सभी लोग ने हौसला दिया कि आप अच्छा करो, आप अच्छा करो। बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इसकी दवाई वहाँ पर मिलेगी, तो सब ने साथ दिया, और समाज हो चाहे परिवार हो, सबका साथ हमको मिलता रहा है समय समय पर, इसके लिए मैं समाज का भी आभारी रहूंगा।
1: जैसे कि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि जैसे अगर कोई इंसान दिव्यांग होता है तो वो समाज से बिल्कुल कटा कटा सा रहता है, वो बाहर निकलना पसंद तक नहीं करता है, तो ऐसे घड़ी में वो थोड़ा कुंठित भी महसूस करता है, तो आपको उस वक्त कुछ ऐसा फील हुआ या फिर आपको जैसे कि आपने बताया कि मुझे समाज ने सपोर्ट किया, परिवार ने सपोर्ट किया, तो अगर किसी इंसान को अगर इस तरह की दिव्यांगता होती है, वो दिव्यांग हो जाता है, या फिर यूं कहिए कि अगर वो बचपन से नहीं होता, बाद में हो जाता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
2: मैम, हम तो यही कहेंगे, जब इंसान के ऊपर शारीरिक पे किसी चीज का प्रश्न अगर चिन्ह लग जाते हैं, तो समस्याएं तो अनेक आ जाती हैं लाइफ में, अब उसका थोड़ा सा साहस से हम

0: उसका सामना करना पड़ता है। अभी बहुत सारे मेरे सामने, अभी किसी को लकवा लग जा रहा है, किसी को पोलियो मार दे रहा है, तो वो तो थोड़ा सा समाज से कट ही जाएंगे, क्योंकि कोई फास्ट करके कोई अपना काम निपटा के जल्दी से घर चल जाता है। मैं जिसे कोई कार्य करता है ऑफिस दफ्तर में, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से निकल जाते हैं समय से, और हम लोग क्या ना थोड़ा सा स्लोली वर्क करना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाना पड़ जाता है, किसी काम करने के लिए किसी दूसरे का सहायता लेना पड़ जाती है, तो ये थोड़ा सा समझ में आता है।
1: लेकिन अगर कहते हैं ना कि अगर मन में साहस हो तो कोई काम करना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि वर्कलोड अगर होता है या फिर हम किसी वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो हम ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है, तो शिक्षा हो या नौकरी के दौरान क्या आपको किसी तरह के भेदभाव का भी सामना करना पड़ा? क्योंकि समाज तो मतलब साथ तो देता ही है, लेकिन अगर हम वर्किंग प्लेस की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा भाव आपको महसूस हुआ?
0: तो होने का तो बहुत कुछ होता रहता है, जैसे
1: लेकिन उसे नजरअंदाज करना,
0: हाँ कुछ थोड़ा सा कुछ लेकर अब कोई बोल देता है, अब जिसे मेरा नाम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, अब हम कोई मार्केट में गए पीछे से हम जिस रूप में है उस रूप से उन लोगों ने बुलाना शुरू कर देता है, कोई ऐसा है कि यहाँ नहीं आप वहाँ जाओ साइड करना। कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो कि कॉपरेट करते हैं, पहले आपको बैठाते हैं या फिर कुछ पूछते हैं कि आपको किस तरह कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये समाज है, समाज में अच्छे और
1: बुरे लोग भी
0: होते हैं।
1: कहते हैं ना कि अपना नजरिया सही रखना चाहिए,
0: अपना नजरिया सही,
1: या दुनिया कुछ भी कहे लेकिन अगर हम सही हैं और हमारा काम सही है तो हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं।
0: जी मैम,
1: हमें ये बताइए कि आप अपनी परिस्थिति से भली भांति वाकिफ है लेकिन फिर भी आपने अपने हौसले बुलंद रखे हैं, तभी जाकर आप आज इस मुकाम पर हैं कि प्रशिक्षण का केंद्र है, आप उसे चला रहे हैं, बच्चों को या फिर आज कहिए लड़कियों को भी आप प्रशिक्षित कर रहे हैं अपने हुनर से, तो ये काफी गर्व की बात है। तो आप हमें ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा कोई समय आया है जब आप बिल्कुल टूट गए हो, निराश हुए हो, और उस समय वो पल जो आपने महसूस किया हो, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए।
0: मैं तो लाइफ में बहुत बार टूटा हूँ, तो लेकिन जब कभी किसी मंजिल पे आप पहुँचते हैं जिससे आप बड़े हो जाते हैं, आपकी उम्र हो जाती है, तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं आपकी लाइफ में, तो सबको चाहता है कि लड़के अच्छा हो, लड़कियाँ अच्छी हो। शादी का जब माहौल बन जाता है तो उस समय कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग का सपोर्ट रहता है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। कुछ इस दुनिया में ऐसे ऐसे नकारात्मक विचार के भी लोग रहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं,
1: लेकिन उस वक्त हमें अपना सोच सकारात्मक रखना होता है।
0: कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं कि छोड़ो हटाओ, उसकी बातों क्या लेके चलना है, अपने हिसाब से करना है।
1: एक नॉर्मल इंसान हो या एबनॉर्मल, लेकिन अगर हम समाज की बातों को लेकर के अपने दिमाग पर अगर इन सब बातों को हावी रखते हैं तो शायद काफी कठिन होगा। तो अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बातें आगे और भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, हम कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत जरूर शामिल करना चाहेंगे।
0: एक पसंद का गाना है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें,
1: और आइए अब इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, हो सकता है कि उस वक्त वो सारी योजनाएं नहीं थी, तो आपने उस वक्त मुसीबत का सामना कैसे किया और आज के डेट में जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपने उस सुविधा का लाभ लिया है या नहीं?
1: सरकार की तरफ से जो हमें सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र होते हैं, ऐसे होते हैं, रेलवे की तरफ से यात्रा सुविधा जो होती है वो हमें मिलती है सरकार।

0: की तरफ से हमें जो पेंशन राशि मिलती है वो हमको मिलती है 1100 रुपये। पहले 400 रुपये थे, अब बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। और अब तो बहुत सारे ट्रीटमेंट मेडिसिन बहुत सारे जनरेट हो गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्राकृतिक हवा है कि जब आपको उस समय लग जाए, अगर उस समय अगर सही दवा अगर आपको ना मिले तो फिर ये शरीर आपका कोई भी दवा एक्सेप्ट नहीं कर पाता।
1: यानी कि अगर समय रहते इलाज अगर हम कराते हैं तो बहुत हद तक हम इन सारी बीमारियों से बच सकते
0: हैं
1: जी। ये बताइए कि जैसे कि हम सरकारी सुविधाओं की बात करते हैं, तो आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उन्हें वर्किंग प्लेस पे क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्योंकि आप भी उस तरह के दिव्यांग के लक्षण आप में भी हैं, तो आपने भी इस तरह की परेशानी का सामना किया होगा, तो आपको क्या महसूस होता है कि हमें वर्किंग प्लेस पर किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए?
0: सबसे पहले हम लोग को आने जाने में सबसे बड़ा समस्या हो जाती है, तो पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, अब तो हो गया है। कुछ जिनके पास फोन है जो ऑनलाइन व्यवस्था अपना देखते थे, जिसे ऑनलाइन क्लासेस कर लेना। दूसरा ये कि

0: परेशानी का सामना किया होगा, तो आपको क्या महसूस होता है कि हमें वर्किंग प्लेस पर किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए?
1: सबसे पहले हम लोग को आने जाने में सबसे बड़ा समस्या हो जाती है, तो पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, अब तो हो गया है। जिनके पास फोन है जो ऑनलाइन व्यवस्था अपना देखते थे, जिसे ऑनलाइन क्लासेस कर लेना। दूसरा ये कि क्लास लेकर जाना आना पढ़ना, ये शिक्षा से रिलेटेड थोड़ा सा समस्या होती है। दूसरा ये हम सही से, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सही से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, सिर्फ क्लास में पहुंचना, थोड़ा लेट पहुंचना। अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो समय से प्रतिबंध हो जाते हैं कि आपको इतने बजे से आना, मार्ग में आप लेट हो गए या फिर सही रास्ते पे आप सही पैर रख कर नहीं चल पाएंगे तो गिरने की ज्यादा संभावना रहती है। सरकार के हमें गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलती है, लेकिन अब तो सरकार पहले से थोड़ा ध्यान दी हुई है, एक्टिव हो गई है, बहुत सारी चीजों में आगे लेके जा रही है।
0: और ये भी जरूरी है कि सरकार ये भी ध्यान दे कि जो भी दिव्यांग परिवार के सदस्य हैं या जो वर्किंग प्लेस पर हैं या फिर जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए हैं, उन लोगों की उस तरह की सुविधाएं मिले ताकि बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहे और अपना काम वो हर सहूलियत के हिसाब से कर सके। अच्छा, जो लोग दिव्यांगता को कमजोरी समझते हैं, वो समाज से नजर नहीं मिलाते, तो लोगों के साथ मिलना जुलना भी वो नहीं रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
1: सबसे बड़ा चीज है कि हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। हम जैसा महसूस करेंगे, जैसा विचार अपने मन में लाएंगे, उस तरीके से हम वहाँ अपने आप को पाएंगे। दूसरा ये कि अगर हम किसी, हमको कहीं शादी ब्याह में जाना है या कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट में जाना है, तो हमारे जैसे व्यक्ति है वो सोचते हैं कि सभी लोग अच्छे पहन कर आएंगे, स्मार्ट लगेंगे, थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हम उसमें जाएंगे थोड़ा सा अजीब फील होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर हमको अगर इन्वाइट किया गया, अगर कोई मानी बर्थडे हो, शादी ब्याह हो, उसमें किसी ने बुलाया है, तो हमको उसका सम्मान मान रखना चाहिए कि उसने हमको इन्वाइट किया है, वो हमको समझ कर बुलाया है, तो हमको जाना चाहिए। लोगों के सामने फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है कि उनके मन में क्या है मेरे प्रति। जब तक से उनकी विचार धारणाओं को हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम अपने आप को सिर्फ कोसते रहेंगे कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। अगर अगला मेरे बारे में अगर थोड़ा सा भी शब्द बोल दिया अच्छा, तो हम समझेंगे कि नहीं, ऊपर वाले मेरे साथ है, अगला मेरे साथ है।
0: या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे इस तरह की कोई दिव्यांगता है तो उसे हमें खुद एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें समाज से दूरी नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज में खड़े होकर अपना एक मुकाम बनाना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में वो पल कौन सा रहा है जिसे आप महसूस किए हो कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ।
1: जब मैं किसी को देखता था कि वो व्यक्ति चल रहा है, दौड़ रहा है, असक्षम है, चलने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई मुकाम में वो हासिल कर लेता है, तो किसी ने हमसे कहा, एक दोस्त है मेरा, आज वो मेरे साथ नहीं रहा इस दुनिया में, बोला कि तुम एक ऐसा काम करो, लोग तुमको ना डराए, तुम उसको डरा दो। वो आया, उसे हम जब थोड़ा सा आंसू आ गए, आंखों में नर्म हो गए थोड़ा सा, वो बोला हम तुम डरो मत, तुम डरा दो दूसरे को, कुछ ऐसा करो। और मेरे ऐसे जान पहचान के एक व्यक्ति है, जो तुम उनसे मिलो, और तुमसे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बोले ठीक है। दूसरे दिन जब उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे चला कि ये युद्ध कला के प्रशिक्षक है, सेल्फ डिफेंस की ये रखते हैं। तो हम सोचे सभी लोग देखे कि कोई ये कर रहा है, कोई पंच मार रहा है, कोई किक मार रहा है, हर तरह का एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, तो हमको देखे नर्वस देखे थे। तो बोले कि तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई है, तुम भी लाइन में लग जाओ। तो ऐसे समय आता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको खड़ा कर देते हैं,
0: हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं तो आपके लिए या फिर जो भी दिव्यांग हैं, जो भी मतलब, मैं तो यही कहूंगी कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: आपके रेडियो एफएम जो होते हैं, मैं उनका शौकीन हूँ। 9th-10th में जब था तो बजा बजा कर मैंने पूरे अपने सिलेबस को खत्म कर देता था। और सबसे बड़ा ये चीज है कि मैं लोगों से एक चीज आग्रह करूंगा कि अपने आप को टूटने ना दें। अगर आप किसी, अगर नेचुरल आपदा से ग्रसित हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, तो आप हौसले और शरीर को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे चीजें हैं, आप उनको अपनाएं। आज मॉडर्न जमाने में हम लोग हैं। इस दुनिया में बेशक सभी चीजों का इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। दूसरा ये कि जब मैं युद्ध कला के क्षेत्र में जब आया, मैं सेल्फ डिफेंस जिसको मार्शल आर्ट्स बोलते हैं, समाज में सबसे ज्यादा अभी एक डेट में लोग उसको दूसरी तरीके से देखते हैं। जैसे गर्ल्स है वो है, तो सभी बच्चे जैसे फैमिली हो गए, फैमिली में माता जी हो गए, पापा हो गए, बहन हो गए, सभी को थोड़ा सा योगा से रिलेटेड

0: या फिर कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो उनको करना चाहिए, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। दूसरा ये कि जब भी किसी बीमारी से अगर आप ग्रसित हो तो खुशी से आप जीवन जीने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा हल्का करेंगे।
1: की बातें निश्चित ही हमारे श्रोताओं को प्रेरणा देगी। हमारे साथ अपनी मन की बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपके माध्यम से मुझे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के मौका मिले।
2: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि दिव्यांग जनों में आत्मविश्वास बढ़े, साथ ही लोगों का नजरिया भी उनके प्रति बदले। और अब आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम हौसला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड नंबर 821115, स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। अब अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हौसला, स्वर एवं संकलन चंदा कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी।

भारत शर्मा व्यास के गाए इसी गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है गैर भोजपुरी गीतों का कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किरण पांडे की आवाज़ से।

तनु प्रियंका के गाए इसी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज़ से। ये गीत हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: अरे छोड़ी गई ले रे

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट

0: बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना, हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

के रहेगा।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ

शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं, और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहां आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहां नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी हैं वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा लें किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो, तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली। उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये गाना उन्होंने बताया और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है। गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ऐ दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरी को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं। देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए। दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा। एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल, समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं। तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता। ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत न हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत ने प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में

है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छूकर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी, जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick. काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल. संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है. मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे. और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार. मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज. दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास. मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम. वही हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है. हमारे और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं.

मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं। राह चाहे कठिन हो, साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी

लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग, नहीं, उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हों, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हों, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारी एक और साथी कह रही है कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही

0: है बॉम्बे मेरी।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें। लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं, उसी को यहाँ उजागर करेंगे तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है। जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है। माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है। तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी। किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं।

किससे रूट जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, समल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज़ में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे

कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही है कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रही कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हुई, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाएं उसका भी अलग एहसास होता है। कभी

से रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूं। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते ही कार्यक्रम गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए हैं। आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए हैं आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे कौर साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है। वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

श्रोता, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार वे राज्य में प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की लगातार समीक्षा पर भी जोर दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता से मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड

गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है, साथ ही शहर में बीएसएनएल सेवा भी प्रभावित हुई है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान यह सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह अगलगी की घटना में 50 लाख रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अग्निशमन दस्ते की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर दो चार पहिया वाहनों के आमने सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर रवाना हो गए हैं। जनाब चौधरी मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो रियासत में मुजव्वजा मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों के सिलसिले में मरकजी वजीर से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आला का पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वज़ीराला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीराला ने प्रोजेक्ट से वाबस्ता अफसरान को तामीराती कामों में तेज़ी लाने के साथ ही हर मरहले के लिए वाज़ह मुद्दत तय करने की हिदायत दी। वज़ीराला ने प्रोजेक्ट की मुस्तकिल निगरानी और पेशरफ्त के जायज़े पर जोर दिया। मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग चिराग पासवान ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग की सनअत किसानों की आमदनी बढ़ाने, देही इक्तसादी निज़ाम को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही है। जनाब पासवान ने महाराष्ट्र के परभनी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नौजवानों से फूड प्रोसेसिंग सनअत से वाबस्ता होने की अपील की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी मांगने की बजाय रोज़गार देने वाला बनना चाहिए। जनाब पासवान ने कुदरती खेती को फ़रोग देने और हिंदुस्तानी खुरदनी पैदावार को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने पर भी जोर दिया। कौमी यौम शुमारियात के मौके पर आज रियासत में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी शुमारियात दफ्तर की रीजनल इकाई की तरफ से पटना के कर्पूरी सदन में मुनक़िद खसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर जनरल रोशन लाल साहू ने किया। इस मौके पर जनाब साहू ने अपने खिताब में कहा कि कौमी शुमारियात मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल हुए सिपाही भर्ती इम्तहान के दौरान बदनवानी के इल्ज़ाम में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक रुकन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ज़िले के रामनगर थाना इलाके के तहत नवागढ़ी हाई स्कूल इम्तहान मरकज पर छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी की। पुलिस सुपरिटेंडेंट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए मुलजिम राहुल से पूछताछ की जा रही है। रियासत के बेशतर हिस्सों में मानसून के सरगर्म होने से दरमियाना और शदीद बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने अगले तीन दिनों तक रियासत के शुमाल मगरिब, शुमाल वस्त, जुनूब मगरिब और जुनूब वस्त हिस्सों में मुतअद्दद मुकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, मगरबी चंपारण समेत कई ज़िलों में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के इलाकों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे ज़्यादा 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया नुमाइंदा ने बताया है कि ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश से कई मकामात पर आबी जमाव हो गया है। बेगूसराय

0: के सिंघौल थाना इलाके के तहत अंग्रेजी ढाला के पास कौमी शाहरा नंबर 31 पर दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। इन सभी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाकर आमदोरफ्त बहाल कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना इलाके के तहत छपरा सिरहाट टोला में सिलेंडर ब्लास्ट के वाके में चार लोग झुलस गए। इस वाके में आग लगने से कई घर आग की जद में आ गए। इधर पटना के दीदारगंज थाना इलाके के तहत करमली चक वाके एक वेयर हाउस में आज सुबह आग लग जाने से 50 लाख रुपए से ज्यादा का कीमती सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के सबब का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के दोपहर के 2:10 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में है।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ

0: कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सी पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।

0: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं।

0: हाउस जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: हम थे वो थी हम थे।

मैं कैसे उसकी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा खोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ तुमको लेने दो

0: अने अने अने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: ने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनुप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।

0: और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।
4: T-A-T, cat, cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat, rat माने चूहा।
4: C-A-T, cat, cat माने चूहा।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: I'm mad, mad.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों के बाद।

0: सखी सहेली सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल हाँ। रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज हाँ। क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूछकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या, मतलब 15 दिन पहले
0: हाँ उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, है ना नेहा
1: जी। बिल्कुल, बधाइयाँ हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली

0: मोस्टली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: भाई देखिए तो, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया है।

0: जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
0: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
0: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
0: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
0: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
2: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये

0: ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
1: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
2: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए।
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहां पाया?
2: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
2: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था, पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई।

0: एक आंच की कसर रह गई।
1: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
2: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं एक गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
1: जी।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने

0: में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे
1: बिल्कुल
0: संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो नेहा, इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप दे रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन

0: गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए, या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है, छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना छोड़ा मुश्किल है। वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है,
1: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहां केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्मीय और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कहीं
0: बिल्कुल
1: हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं, एक खास
0: बिल्कुल
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सफल
0: है।
1: है
0: और दोनों को
1: जी।
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल
1: जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जड़तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए

0: ये विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत
0: बिल्कुल
1: ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
0: पूरे
1: रहना है,
0: समय
1: जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है।
0: जी
1: तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: दे
1: उन
0: दिए
1: पर,
0: जाए तो वो घबरा
1: तो एक
0: जाते हैं।
1: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो
0: बिल्कुल,
1: एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद
1: हाँ
0: भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि
1: जी
0: ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों
1: जी
0: पे
1: जी
0: खरी
1: जी जी
0: उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिल के काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
1: जी
0: और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: नेहा,
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पाती पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी।
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते ही, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो
1: जी
0: कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप
1: जी
0: सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है,
1: जी
0: तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या
0: बिल्कुल
1: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र
1: विवाह
0: है
1: को अच्छी तरह से
0: जी।
1: बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो, विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे।
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए. अच्छा अच्छा
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना.
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूंथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको, आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे. पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए. अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से.
0: हाँ, लेकिन जिसको
1: हाँ
0: नमक, जिसको फीकी लगेगी वो कहेगी अरे ये क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5. हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं. टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच. मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच. और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं. और नमक का आपके स्वाद के अनुसार. अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे. सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा. हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए. तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए. और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए. और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है. फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए. और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे. फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर. और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए. और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए. अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए. और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं. हरा धनिया डालें. गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है. कचौरियां तो बन ही चुकी हैं.
0: बिल्कुल,
1: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए. और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए.
0: हाँ।
1: छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए. दोनों को मिलाकर खाइए.
0: बिल्कुल
1: जी.
0: तो
1: बस
0: अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा. तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो एसिड

0: इफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं, और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है।

0: रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयां नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी
1: जी
0: कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
1: जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
1: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है। सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है, कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: पड़े?
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही,
0: दही से अच्छा कोई
1: हाँ।
0: प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने हमने पहले एक्सरसाइज देनी है।

0: एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइजेज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइजेज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
1: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
0: हाँ
1: है?
0: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
1: जी
0: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी जी जी और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। हाँ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। पर अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए।
1: ओके।
0: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।

0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी,
0: और
1: क्या
0: काफी
1: बात
0: सुना
1: है
0: है हमने।
1: जी।

0: ये जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
1: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या-क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
0: हाँ, तो
1: दीजिए।
0: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
1: जी
0: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, एक छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है कि क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडी लग रही हो रहा है, वो बटन दबाता है और विदिन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो
1: जी
0: उसको 24 आवर pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द इसोफेगस।
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती
0: तो
1: हैं?
0: कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको एसिडिटी हो रही

0: डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी

0: पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए. सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए. तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है. तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया. ये क्या समस्या है?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है. तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं. तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है. तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला. ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है. तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो.
1: ओके,
0: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स. माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो. अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स. इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है.
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स.
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है. तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी. तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, हाँ. तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ.
1: जी जी जी. और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो,
0: बिल्कुल.
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है? तो
0: हाँ, तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है. दोनों सेम चीज करते हैं. अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है. अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है. एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है. द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर. तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए. वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स. तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज. धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है. अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड. अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट ALD, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और

0: दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है,
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं।
1: जी जी और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं है। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, खा ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: सब आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो। तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो। बार सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल दे, अरे ये तेल अच्छा है ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टीरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स भी
0: गलत
1: आता है,
0: बताएं।
1: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर नेचुरल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो सिंपल लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल।

0: स्टाइल को ठीक करोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सके।

0: ये विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.

0: महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार। उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ तीन तीन सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
1: Total of 105 awards will be conferred to the awardees today. A very prestigious event that honors armed forces, security personnel for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुबेदार प्रेम बहादुर गुरंग बैंडमास्टर हैं महारेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर सुनिए बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन। भोजपुरी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार। ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का प्रसारण समय होगा शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र। समय होगा शाम 7:25। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7:50 पर ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत, कार्यक्रम होगा लोकधारा बंदगी। इस कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे कव्वाली रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आप लेंगे। रात्रि 10:55 पर रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम बारी बारी से रिले करेंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: विज्ञापनों से पहले अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम में हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम एल्बम का टाइटल भजन अरविंद सिंह और प्रियंका मुखर्जी की आवाज़ में। और अब आइए भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम वंदन में हम आपको सुनवाएं हे देवकी के लाल एल्बम का टाइटल सॉन्ग, आवाज़ संजय गिरी की है।

हे देवकी के लाल एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे, संजय गिरी और साथियों की आवाज़ें थी। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाएं जय गोविंद जय गोपाला एल्बम का टाइटल भजन अनूप जलोटा की आवाज़ में।

जय गोविंद जय गोपाला एल्बम का ये भजन अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में। और अब इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, आज हम अपनी बहनों से बातें करेंगे बच्चों की पोषण का ख्याल कैसे रखें, साथ ही परिवार कलह से बचे। कला संस्कृति में बनारसी कढ़ाई साड़ी और प्रेरक महिला में आज हम जानेंगे एक शास्त्रीय गायिका बेगम अख्तर के बारे में। सखियों, बच्चों के सही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है, ऐसा आहार जो पोषण से भरपूर हो। सखियों, अक्सर बच्चे हर रोज़ एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं और खाने में आनाकानी करते हैं, इसलिए सखियों हर दिन अलग अलग रंगों की सब्जियां बना के खिलाएं और मौसमी फल दें। इनसे बच्चों को ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। सखियों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर होता है, एनर्जी नहीं होती, सुस्त रहते हैं। ऐसे में बच्चों को प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हम अपने बच्चों को हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए दूध, दही, पनीर, दालें और अंडे नियमित दे सकते हैं। और हाँ सखियों, मैदे से बनी चीज़ों की जगह गेहूं की रोटी, ओट्स, दलिया और सूजी का सेवन ज़रूर कराएं। इससे बच्चों को भरपूर फाइबर और एनर्जी मिलती है। सखियों, पैकेट बंद चीज़ें, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, मिक्सचर, ऐसी फूड से बच्चों को दूर ही रखें। और साथ ही खाने में नमक और चीनी की मात्रा सीमित रखें। कोल्ड ड्रिंक और डिब्बा बंद जूस से भी बच्चों को दूर रखें। इसकी जगह पे नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी दें। साथ ही साथ सखियों, बच्चों के खाने का तय सीमा रखें, यानी कि एक समय रखें। खाना खाते समय टीवी, मोबाइल या टैबलेट पूरी तरह से बंद रखें, ताकि बच्चे खाने पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। सखियों, बच्चों को दिन भर में पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। और हाँ सखियों, बच्चों को पोषण के साथ साथ बच्चों को कम से कम 1 घंटे खेलने कूदने ज़रूर दें, जिससे उनकी भूख लगे और पाचन भी सही रहे और पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। अब आइए सखियों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी हम मोहम्मद अज़ीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों को सुन रहे थे और अब आइए बात करते हैं परिवार कलह से बचें। सखियों, पारिवारिक कलह यानी कि क्लेश और आपसी मतभेद किसी भी हंसते खेलते घर की शांति को छीन लेता है। परिवार को आपस में जोड़कर रखना और घर को खुशहाल बनाना भी एक कला है, जिसमें धैर्य, समझदारी और आपसी सम्मान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब सब मिलकर प्रयास करते हैं तभी एक घर सुखद आशियाना बनता है। सखियों, जब घर का कोई सदस्य गुस्से में हो तो उस समय बहस करने की बजाय शांत हो जाए। शांत माहौल में कही गई बात का असर ज़्यादा होता है, वहीं चिल्लाकर गुस्से से बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। घर के सदस्यों की कमियों को बार

बार निकालने के बजाय उनके छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफ करें। इससे आपकी आपसी सम्मान भी बढ़ता है। सखियों, बच्चों की सोच और बुज़ुर्गों के विचार अलग हो सकते हैं, ऐसे में दोनों को प्यार से समझाएं। परिवार में कभी कभी अनजाने में कही गई बातों को नज़रअंदाज करना भी बेहतर होता है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया भी ना दें। सखियों, चाहे बच्चे हो, पति हो या ससुर, हर किसी अपने को जीवन में थोड़ा निजी समय ज़रूर देना चाहिए। दूसरों के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा भी दखल ना दें। घर का कोई भी बड़ा निर्णय हो, जैसे बजट, बच्चों की पढ़ाई, प्रॉपर्टी या कोई भी काम हो, अकेले लेने की बजाय सबके साथ बैठकर चर्चा करें, उसके बाद निर्णय लें। सखियों, कई बार ऐसा होता है कि पैसे की तंगी या फिजूल खर्ची भी झगड़े का एक कारण बन जाता है। ऐसे में एक समझदार गृहिणी की तरह घर का बजट बनाकर चलें। घर के कामों का बोझ अकेले उठाने की बजाय परिवार के अन्य सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांटें, ताकि आप पर तनाव ना बढ़े। सुबह का नाश्ता या रात का डिनर पूरा परिवार एक साथ बैठकर करें। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जहां सब साथ में बैठें, हंसी मजाक करें, और अगर किसी को कोई शिकायत या परेशानी हो तो उसे प्यार से समझाएं। सखियों, परिवार के हर सदस्य की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। दूसरों के घरों या उनकी जीवन शैली से अपने परिवार की तुलना कभी न करें, यह हीन भावना या कला को जन्म देता है। सखियों, अब इसी के साथ आइए सुनते हैं विनोद राठौर और सोनू निगम को।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: Saving करने की भी यही उम्र है।
4: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na,
4: RBI कहता है।
5: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
6: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
7: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
6: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
8: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
6: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को देश के नंबर एक सीमेंट

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनिए वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाएं, उसके बाद गली बनवाएं, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाएं, उसके बाद रोड बनवाएं, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: सखियों, अब बात करते हैं बनारसी कढ़ाई साड़ी पर। बनारसी कढ़ाई साड़ी अपनी अनूठी बनावट, पारंपरिक हस्तशिल्प और शाही लुक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह साधारण बनारसी साड़ियों से अलग होती है क्योंकि इसमें कढ़ुआ बुनाई या फिर जरी के ऊपर हाथ से की गई जरदोजी और गोटा पत्ती जैसी भारी कढ़ाई का इस्तेमाल होता है। सखियों, बनारसी साड़ी का इतिहास सदियों से पुराना है और यह कल भी सदाबहार थी और आज भी उतनी ही आधुनिक और लोकप्रिय है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस साड़ी में समय के साथ कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसकी शान आज भी कम नहीं हुई है। सखियों, पहले की साड़ियों में असली सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल होता था, जिससे साड़ियाँ काफ़ी भारी और कीमती होती थीं। मुगल काल के प्रेरित डिज़ाइंस जैसे कि आम की बूटी, बेल बूटे, शिकारगा यानी कि शिकार के दृश्य और जाल वर्क बहुत लोकप्रिय थे। पहले बनारसी का मतलब सिर्फ भारी और कड़क कतान सिल्क माना जाता था, जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता था। सखियों, आधुनिक समय में बनारसी साड़ियाँ अब सिर्फ सिल्क तक सीमित नहीं हैं, अब यह जॉर्जेट, ऑर्गेंजा, शिफॉन और टसर सिल्क पर भी बनती है, जिन्हें कैरी करना बेहद आसान होता है। आज के समय में असली सोने चांदी की जगह टेस्टेड या रिसाइकल्ड जरी और रेशम के धागों का उपयोग होता है, जिससे साड़ी का वजन कम और कीमत बजट में आ जाती है। पहले जहां लाल, मैरून, पीला और हरा रंग की चलती थी, वहीं अब लड़कियां पोस्टल पिंक, लेवेंडर, मिंट ग्रीन और आइवरी जैसी ट्रेंडी रंगों में बनारसी पहनना पसंद करती हैं। सखियों, मशीन के आने के बाद भी आज भी असली हाथ की बुनी बनारसी साड़ी की कीमत और मांग सबसे ज़्यादा है। आज भी भारतीय शादियों में दुल्हन के लहंगे के साथ या फेरों के समय बनारसी साड़ी पहनना सबसे शुभ और रॉयल माना जाता है। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं सोनू निगम को।

सखियों, घड़ी की टिक टिक कर इशारा कर रही है कि अब हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाइए, शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

मनोरंजन ओझा के गए इस भोजपुरी लोक भजन के साथ ही भोजपुरी लोकगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

जानकारी के मुताबिक उ राज्य में प्रस्तावित अलग अलग सड़क परियोजना के लेके केंद्रीय मंत्री से चर्चा करी हैं। मुख्यमंत्री के पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगन के साथ भी मुलाकात करे के कार्यक्रम बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जुलाई के पटना मेट्रो परियोजना के तहत मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो रेलवे चलावे के घोषणा कैले बाड़न। आज पटना मेट्रो परियोजना के प्रगति के उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री परियोजना से जुड़ल अधिकारी लोगन के निर्माण कार्य में तेजी लावे के साथ ही हर चरण खातिर साफ समय सीमा तय

0: के आदेश दिले बाड़न। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान कहले बाड़न कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसान लोगन के आमदनी बढ़ावे, देहाती अर्थव्यवस्था के मजबूत करे और युवा लोगन खातिर रोजगार के अवसर पैदा करे में बड़ भूमिका निभा रहल बा। श्री पासवान महाराष्ट्र के परभनी में एगो कार्यक्रम के संबोधित करत युवा लोगन से खाद प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े के अपील कैलें। उ कहले कि आज युवा लोगन के नौकरी मांगे के बजाय रोजगार देवे वाला बने के चाही। श्री पासवान प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देवे और भारतीय खाद उत्पाद सबके वैश्विक गुणवत्ता के मुताबिक बनावे पर भी जोर दिले। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौका पर आज देश प्रदेश में कईन गो कार्यक्रम आयोजित कई जा रहा बा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय इकाई के ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के उद्घाटन पर उप महानिदेशक रोशन लाल साहू कैले। इस मौका पर संबोधन में श्री साहू कहले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे ले। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में मॉनसून के सक्रियता से माध्यम से भारी बरखा रिकॉर्ड कैल गई बा। मौसम विभाग अगला तीन दिन तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सा में कईन जगह पर तेज हवा के साथे पानी बरसे के अनुमान जतौले बा। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण समेत कईन जिला में अलग अलग जगह पर भारी बरखा के आशंका के लेके ऑरेंज अलर्ट जारी कल गिल बा। इहे ना पटना और आसपास के इलाका में भी सवेरे से बादल लागल बा और रुक रुक के बरखा हो रहल बा। विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे बेसी 196.4 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कर लिल बा। हमार अररिया संवाददाता बतौले कि जिला में अलग अलग जगह पर रात में भइल मूसलाधार बरखा के कारण कईन जगह पर भीषण जल जमाव की स्थिति बन गई बा। साथ ही शहर में BSNL सेवा भी प्रभावित भइल बा। केंद्रीय चयन पर्षद के कल खत्म भइल सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान चोरी के आरोप में मुंगेर पुलिस सॉल्वर गैंग के एगो सदस्य के गिरफ्तार कैले बा। पुलिस जिला के रामनगर थाना क्षेत्र के तहत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान इस सफलता पौले बा। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद बतौले कि पकड़ाइल आरोपी राहुल से पूछताछ कैल जा रहल बा। शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के तहत छपरा सिराहा टोला में सिलेंडर ब्लास्ट के घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गई बा। ब्लास्ट से लागल आग आसपास के कईन गो घर के अपना चपेट में ले ललक। एने पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के करमली चक में स्थित एगो वेयर हाउस में आज सवेरे लागल आग में 50 लाख रुपया से बेसी के संपत्ति जर के नष्ट हो गई। दमकल के 27 गो गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आगी पर काबू पौलस। आगी लगे के कारण जांच कैल जा रहल बा। बेगूसराय जिला के सिंघौल थाना क्षेत्र के तहत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर 2 गो 4 पहिया गाड़ी के आमने सामने के टक्कर में 4 लोग के मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बाड़न। इस सब लोग के निजी अस्पताल में इलाज चल रहल बा। पुलिस क्षतिग्रस्त गाड़ी के सबके सड़क से हटा के आवागमन सुचारू करावल देले बा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी कैलस। बोर्ड कहलस कि 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच के नया भाषा नीति के पालन ना करे के पड़ी। बोर्ड ई भी कहलस कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहल वर्तमान बैच के छात्र लोग के भी 10वीं कक्षा में पहुँचला पर तीसरी भाषा के बोर्ड परीक्षा देवे के जरूरत ना हुई। बोर्ड कहलस कि कक्षा के मुताबिक संसाधन सामग्री समय से उपलब्ध करा दिहल जाई। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक की हिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

श्रोता सभे, गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब किसान भाई बहन लोग के, पंचू भाई के प्रणाम। देखिए आज 29 जून बा, आज के दिन पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनावल जाला। आई ए मौका पर जानल जाओ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आखिर का होला आ एकर महत्व का बा। श्रोता सभे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उ इलाका होला जहाँ साल भर गर्मी अपेक्षाकृत ज्यादे रहेला आ बरखा भी बढ़िया होखेला। ए इलाका में खेती किसानी, जंगल, नदी, जीव जंतु आ जैव विविधता के भरमार मिलेला। हमनी के देश भी यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हिस्सा बा। एकरा चलते धान, मक्का, गन्ना, केला, आम, नारियल आ कई तरह के फसल यहाँ बढ़िया उपजेला। हमनी के अगर बिहार के बात कइल जाओ तो बिहार के खेती भी मानसून पर बहुत निर्भर बा। समय पर बरखा होके तो किसान लोग के मेहनत रंग ले आवेला। बाकी जलवायु परिवर्तन, जंगल के कटाई, बढ़त प्रदूषण आ अनियमित बरखा से खेती पर असर पड़ रहल बा। यही कारण बा कि अब हमने के पर्यावरण बचावे खातिर सजग होके के जरूरत बा। श्रोता सभे लोग, खेत के मेड़ पर पेड़ लगाई, पानी के बचत करी, माटी के उर्वरता बनौले राखी, संतुलित खाद के इस्तेमाल करी आ जरूरत के हिसाब से सिंचाई करी। प्राकृतिक संसाधन के बचावल हमनी सभे के जिम्मेदारी बा। आज के दिन हमनी सभे के ई संकल्प लेबे के चाही कि प्रकृति के संरक्षण कइल जाई, पर्यावरण के स्वच्छ रखल जाई आ खेती के टिकाऊ तरीका अपनावल जाई। काहे कि जब प्रकृति सुरक्षित रही तबे खेती समृद्ध होई आ किसान खुशहाल रहन। काहे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्राकृतिक संपदा आ जैव विविधता के रक्षा कइल जाई, पर्यावरण संरक्षण के अपन जिम्मेदारी समझल जाई आ आने आवे वाला पीढ़ी खातिर एगो सुरक्षित आ हरित पृथ्वी के निर्माण कइल जाई, तबे हमनी के ई क्षेत्र सुरक्षित रह सकेला। आ श्रोता सभे, कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ ओले पहले ई भी जान लेल जाओ कि आज के कार्यक्रम में और हमने के का जानकारी मिले वाला बा। तो देखी आज बत कही हुई अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस के बारे में आ जानल जाई। लोकतंत्र में संसद के महत्व का बा। एकरा अलावा कार्यक्रम में मन मनसाइन खातिर गीत गौनई के आनंद लेल जाई टुकू पाठक से।

के वार्ता के विषय बा रोहतास के धरोहरण के महत्व बतैहन कृष्ण किसलय। एक जानकारी में आज बतियावल जाई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में आ अंत में जायजा लिहल जाई मौसम के पूर्वानुमान के। लेकिन पहले बत कही लोकतंत्र में संसद के महत्व के बारे में। श्रोता सभे, लोकतंत्र के अर्थ होला जनता के द्वारा आ जनता के खातिर शासन। लेकिन करोड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से एक साथ शासन ना चला सके, ऐसे वो अपना प्रतिनिधियन के चुनाव करेलन, जवन की संसद में जाके जनता के आवाज बनेलन। हमने के देश के संसद लोकतंत्र के सबसे बड़ विधायी संस्थान है। ये दू गो सदन लोकसभा आ राज्यसभा से मिल के बनल बा। संसद के पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम कानून बनावल है। देश के बदलत आवश्यकता के अनुसार नया कानून बनाना आ पुराना कानूनन में संशोधन कइल संसद के जिम्मेदारी है। संसद के दूसर महत्वपूर्ण काम सरकार के जवाबदेही सुनिश्चित कइल है। सांसद लोग प्रश्नकाल, शून्यकाल, विभिन्न चर्चा आ समिति के माध्यम से सरकार से सवाल पूछेलन आ जनता के हित से जुड़ल मुद्दा के उठावेलन। ऐसे शासन में पारदर्शिता आ उत्तरदायित्व बनल रहेला। संसद देश के बजट के भी मंजूरी देवेला। सरकार जनता के धन के उपयोग कौना तरीका से करी ए पर संसद विचार विमर्श करेला। बिना संसद के स्वीकृति के सरकार सार्वजनिक धन खर्च ना कर सके, ऐसे वित्तीय अनुशासन आ जनहित सुनिश्चित होला। संसद राष्ट्रीय महत्व के विषयन पर चर्चा के सबसे बढ़हन मंच है। चाहे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार या राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय होके संसद में सब पहलू पर गंभीर चर्चा होला। ऐसे विभिन्न विचार सामने आवेला और बेहतर निर्णय लेवे में सहायता मिलेला। लोकतंत्र तबे मजबूत होला जब संसद प्रभावी ढंग से काम करे आ जनप्रतिनिधि जनता के अपेक्षा पर खरा उतरस। साथ ही नागरिक के भी दायित्व बा कि मतदान करे, लोकतांत्रिक मूल्य के सम्मान करी आ जनहित के मुद्दा पर जागरूक रही। आई हमने के सब कोई मिल के लोकतंत्र के ए महान संस्था के सम्मान कर जाओ आ एगो जागरूक, जिम्मेदार आ सशक्त भारत के निर्माण में आपन योगदान दिया जाओ। तो देखी ई तो हमने के बत कही रहल लोकतंत्र में संसद के महत्व पर। अब आई कुछ गीत गौनाई के आनंद लिया जाओ। तो आई सुन जाओ।

श्रोता सभे देखी टुकू पाठक के भक्ति गीत कतना बढ़िया रहल, सुन के मन मिजाज एकदम गदगद हो गई। ये गीत खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। अब आई कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ आ जानल जाओ रोहतास के धरोहरण के महत्व के बारे में। कहें कि जौन रोहतास आ कैमूर जिला बा वो ऐतिहासिक धरोहरण से भरल पड़ल बा। जगह जगह शैलचित्र, शिलालेख, कंदरा, गुफा, इमारत,

0: सासाराम शहर में ही कई गो ऐसा ऐसा चीज बा, शेर शाह के मकबरा से लेके हसन शाह सूर्स तक के जौन मकबरा बा, ये सारा ऐतिहासिक महत्व के धरोहर है। तो एकर का महत्व बा ए बारे में आई हमनी के जानल जाओ कृष्ण किसलय से, आई सुने के।
1: धरोहर किसी भी व्यक्ति, किसी समाज और किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। उससे पता चलता है कि हम कौन हैं, किसके वंशज हैं, कहां से आए हैं, हमारा समाज, हमारा देश कितना समुन्नत रहा है और इतिहास में हमारा स्थान क्या है। प्राचीन धरोहरों से ही हम जान पाते हैं कि आदमी का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ और वह सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली, भाषा, बोली, लिपि, ज्ञान विज्ञान के किन चरणों से गुजरकर आज के आधुनिक समाज तक पहुंचा है। दुनिया का हर संवेदनशील आदमी

धरोहर किसी भी व्यक्ति, किसी समाज और किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। उससे पता चलता है कि हम कौन हैं, किसके वंशज हैं, कहां से आए हैं, हमारा समाज, हमारा देश कितना समुन्नत रहा है और इतिहास में हमारा स्थान क्या है। प्राचीन धरोहरों से ही हम जान पाते हैं कि आदमी का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ और वह सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली, भाषा, बोली, लिपि, ज्ञान विज्ञान के किन चरणों से गुजरकर आज के आधुनिक समाज तक पहुँचा है। दुनिया का हर संवेदनशील आदमी अपना, अपने समाज और अपने देश काल की छवि और पहचान धरोहरों में देखना, तलाश करना चाहता है। रोहतास में तो हर ओर धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। कुछ बड़ी धरोहरों पर तो राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, लेखकों ने काम किया है, मगर यहाँ के क्षेत्रीय स्तर की अमूल्य धरोहरों और पुरातात्विक संपदा पर क्रमबद्ध कार्य नहीं हुआ है। जाने अनजाने धरोहरें नष्ट भी हो रही हैं, जिन्हें बचाने और सुरक्षित रखने के लिए विरासत में रुचि रखने वालों को आगे आना होगा। रोहतास की धरोहरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और रोजगार, राजस्व की आर्थिक ताकत भी बनाई जा सकती है। एक मुगल बादशाह की बेगम का मकबरा ताजमहल देखने के लिए हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक आगरा पहुँचते हैं, पर उसी कालखंड में इस देश के बादशाह रहे और पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा देने वाले शेरशाह का मकबरा देखने आने वालों की संख्या सैकड़ों में या साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार ही होती है। जबकि यह ताजमहल से ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा ऊंचा, विशाल सरोवर के बीच में स्थित अफगान वास्तुकला का भारत में एक बेजोड़ नमूना है। गुजरात से चलकर 10 मई 1608 को अब्दुल लतीफ नामक यात्री सासाराम आया था और शेरशाह के मकबरे की भव्यता और सुंदरता देखकर दंग रह गया था। रोहतास जिले की एक और बहुचर्चित धरोहर रोहतासगढ़ किला है, जिसके नाम पर जिले का नामकरण हुआ। यह देश चर्चित पहाड़ी किलों चौतौड़गढ़, रणथंबौर, चुनारगढ़, अलीश्वरगढ़ से भी विशाल है। आईना अकबरी में इतिहासकार अबुल फजूल ने इसकी 14 कोस की किलाबंदी का उल्लेख किया है। यह वही किला है जिसमें बादशाह जहांगीर से बगावत कर शहजादा खुर्रम ने 1621 में अपनी बेगम अर्जुमंद बानो के साथ शरण ली थी। तब किले के दुर्ग रक्षक सैयद मुबारक हुसैन ने किले की चाबी उसे सौंपी थी। रोहतासगढ़ में ही खुर्रम का छोटा बेटा मुगल शहजा मुराद बख्श पैदा हुआ था। खुर्रम इतिहास में बादशाह शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके बेगम मुमताज महल के नाम से, जिसकी याद में उसने ताज महल बनवाया। कैमूर पहाड़ पर स्थित रोहतासगढ़ किला मुगलों के अधीन रहने से पहले हिंदी राजाओं, उरांवों, खरवारों के अधीन रहा था। जहाँ से मुगल काल में सूबा बंगाल का शासन चलता था, जिसमें आज के बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। 1538 में बंगाल के सूबेदार मानसिंह ने इस किला परिसर में खूबसूरत भवन बनवाया। अकबर के शासनकाल में रोहतास किला के अधीन 4550 घुड़सवारों का रिसाला और 162,000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। रोहतास किला 12वीं सदी में जपला के प्रताप ध्वाला के अधीन था और इससे भी पहले इसका ऐतिहासिक साक्ष्य 7वीं सदी के बंगाल के राजा शशांक के समय का है। यहाँ आज भी प्राचीन रोहतासन मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है, जिसके बारे में जनश्रुति है कि इसे वैदिक राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनाया था। 1763 में उधवानाला में अंग्रेजों से लड़ाई हारने के बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपने परिवार के साथ इसी किले में शरण ली थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में कुंवर सिंह के भाई निशान सिंह ने इस किला को अपना केंद्र बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। नाकाम ब्रिटिश जनरल एडवर्ड लुगार्ड को तब इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट जाना पड़ा था। बाद में कैप्टन डगलस और मेजर हेनरी हैवलॉक ने 7,000 सैनिकों के साथ इस किले पर धावा बोला और इस पर कब्जा करने में सफल रहे। कैमूर पहाड़ी पर शांति प्रसाद जैन कॉलेज के पास 2,500

साल पहले स्थापित सम्राट अशोक का शिलालेख, ताराचंडी मंदिर, चंदन शहीद वीर, बूढ़न पहाड़ी, शेरशाह के पिता हसनसूर शाह का मकबरा आदि इस बात के प्रमाण हैं कि हजारों सालों में सासाराम बसता और उजड़ता रहा है। अरब के शहीद चंदन पीर 1160 में बिहार पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ आए थे। बूढ़न पहाड़ी पर फकीर बुरहान से मिलने तुलसीदास कालसी से आया करते थे। तुलसीदास ने लिखा भी है, शहर मुहर्रम 29 सहस 44 जान, बूढ़न शाह बैकुंठ को ताओ किन्ह प्यान। कैमूर पहाड़ी पर ही चेनारी से 15 किलोमीटर दूर

0: तो श्रोता सभे ऐतिहासिक धरोहरण के बात भइल तो देखी हमनी के सुनत रहें जा कृष्ण किसले से। आ अब हमनी के कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले सुन लिहल जाओ कुछ संदेश, तो आई सुने के।
1: अपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
0: श्रोता सभे हमने के सुनत रहें जा ये संदेश से पहले रोहतास जिला के ऐतिहासिक धरोहरण के बारे में। तो देखी हमने के जिला खाली अपन प्राकृतिक सुंदरता खातिर ना, बल्कि अपना गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत खातिर भी पूरा देश में जानल जाला। एजा के धरोहर हमने के भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति आ स्थापत्य कला के अनमोल झलक देखावेला। सासाराम शहर में ही अगर बात कर जाओ तो शेर शाह सूरी के मकबरा के देखे खातिर देश विदेश से लोग आवेला। ये भव्य मकबरा एगो विशाल तालाब के बीच बनल बा आ भारतीय अफगान स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण मानल जाला। जैसा कि हमने के सुनने ही जा भी कि एकर विशालता आ सुंदरता देश विदेश से आवे वाला पर्यटक लोग के आकर्षित करेला। यही सासाराम में हसन खान सूरी के मकबरा भी बा, जवन की शेर शाह सूरी के पिता के स्मृति में बनावल गई बा। ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बा। हमने के जिला के सबसे जवन प्रसिद्ध धरोहर है उ बा रोहतासगढ़ किला। कैमूर पर्वतमाला पर स्थित ये भारत के सबसे विशाल पहाड़ी किला में गिनल जाला। एकर विशाल दीवार, प्राचीन दीवार, दरवाजा, महल आ जल संचयन के व्यवस्था आजो ओ समय के उन्नत वास्तुकला आ सैन्य कौशल के कहानी कहेला। तो हमने के अपना धरोहरन के बचा के रखे के चाही आ ओकर संरक्षण करे के चाही। आज हमनी के देखी बतकही हुई

सांख्यिकी दिवस के बारे में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, कहें कि प्रत्येक वर्ष 29 जून के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनावल जाला आ ई भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में मनावल जाला। इस दिवस के उद्देश्य लोगन में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ावल आ देश के विकास में आंकड़ा के भूमिका के समझावल बा। कहे कि सांख्यिकी खाली संख्या के संग्रह ना हो बल्कि समाज के वास्तविक स्थिति के दर्पण हो। जैसे किसान भाई लोग के आय बा, वर्षा के आंकड़ा बा, फसल उत्पादन, जनसंख्या, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा के उपलब्धता आ शिक्षा के स्थिति, ये सब के सही आकलन विश्वसनीय आंकड़ा के आधार पर ही संभव बा। जब आंकड़ा सटीक होई तो योजना भी अधिक प्रभावी बनी आ उनकर लाभ भी सही लोग तक पहुँची। आज डिजिटल तकनीक के दौर में डेटा के महत्व और बढ़ गई बा। ऐसे आवश्यक बा कि आंकड़ा के संग्रह, विश्लेषण, ओकर उपयोग पूरा पारदर्शिता, सटीकता आ जिम्मेदारी के साथ कइल जाओ। तो हमने के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर ई संकल्प लेबे के चाही कि सही जानकारी, वैज्ञानिक सोच आ तथ्य पर आधारित निर्णय लेबे के संस्कृति के बढ़ावा दिहल जाए। आ अब तनी आई जान लिहल जाओ मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिला के एक दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ हल्का वर्षा होके के संभावना बा। अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70% आ दोपहर में 25-30% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 5-10 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान बा। आ काल 4 मिलीमीटर वर्षा के संभावना बा। अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75%, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25%। पवन के जवन दिशा बा उ 90 डिग्री पर रही। आ चेतावनी बा आंधी आ बिजली, तूफान आदि, एकरा अलावा तेज सतही हवा भी चल सकेला। तो चलत चलत ले देखी हमने के आज इस समय उड़ा गई है कार्यक्रम के। आ एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहन संतोष कुमार। तो सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। आइए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ से। वीरेंद्र पांडे और सतीश मुन्ना हैं गीतकार और संगीतकार हैं सुरेंद्र कोहली। फिल्म का नाम है कब आई है दुल्हा हमार।

सांझगीत कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों आइए अब सुनते हैं युग युग जिया मोरे लाल फिल्म का एक गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में।

गंगा यमुना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। राकेश दीप के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शिवम बागची ने। और अब इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन

0: कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी।
1: एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाही और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है
0: बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, अच्छा लगा। सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेस को हम लाएंगे। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051। और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002। और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
2: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में ये कोर्स जो है न कोविड था, न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
2: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
2: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल

0: पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना। इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या कहाँ कैसे हो सकता है कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002 और 1800121051। डॉक्टर नीरज बताइए। हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: हाँ, इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की, और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है। जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल

0: पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस से स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए, और हमारे पास एग्जांपल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 ही सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिला ये शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं।

और कुछ फिल्म संगीत का भी आनंद आप और हम लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालते हैं। आज दिनांक 29/6/2026 को माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार श्रीमती रमा निषाद द्वारा सासाराम के मोकर स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया तथा छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी पढ़ाई सुविधाओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। माननीय मंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में समान अवसर प्रदान करती है और बेटियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाती है। संवाद के दौरान मंत्री ने छात्राओं से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। माननीय मंत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर की स्वच्छता, छात्रावास व्यवस्था, भोजन सुरक्षा तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि छात्राओं की सुविधा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में मानसून के सक्रिय होने तथा कई जिलों में वर्षा एवं वज्रपात की बढ़ती संभावना को देखते हुए आम नागरिकों के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। जब आसमान में घने बादल छा जाएं, तेज हवाएं चलने लगें अथवा बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे तो इसे मौसम के खराब होने का संकेत मानते हुए तुरंत सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए। विशेष रूप से वैसे लोगों को सावधान रहना है जो खुले मैदानों, खेतों, सड़कों या अन्य खुले स्थानों पर मौजूद रहते हैं। ऐसे लोगों को यथाशीघ्र किसी पक्के एवं सुरक्षित भवन या आश्रय स्थल में शरण लेने की सलाह दी गई है। साथ ही बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर, लोहे के पोल, टावर तथा धातु से बनी वस्तुओं से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि वज्रपात के दौरान ये स्थान अधिक जोखिमपूर्ण साबित हो सकते हैं। किसानों, मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। खेतों में काम कर रहे लोगों को मौसम खराब होने की स्थिति में तत्काल कार्य रोककर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। इसके अलावा तालाब, नदी, नहर, जलाशय एवं अन्य जल स्रोतों के आसपास मौजूद लोगों को तुरंत वहां से हटने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल क्षेत्र वज्रपात के समय अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर भी लगातार नज़र रखें। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत।

सिर्फ तुम फिल्म के इस गाने के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजकीय उच्च पथ योजना, पुल निर्माण समेत विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में सड़क संपर्कता को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सड़क योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौधरी का आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 जुलाई को पटना मेट्रो परियोजना के तहत मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो रेल के परिचालन के लोकार्पण की घोषणा की है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण

0: के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराए जाएंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव ईवीएम से होगा और आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा।
1: सारी तैयारी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में, विभाग के स्तर से पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। रोस्टर चूंकि 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा और इसके अलावा बाकी जो चुनाव से संबंधित जो सामान्यतः प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में, चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के समय पर जाकर चुनाव का काम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। मल्टीपोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं, लोगों को सहूलियत होगी, तेजी भी आएगी।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में के दौरान आरोग्य सेतु के दूसरे चरण आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक समेत कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को लोकप्रिय बनाना है। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री यादव पटना में सहकारिता सप्ताह समारोह के उद्घाटन और जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के माध्यम से पैक्स और जमीनी स्तर की सहकारी संस्थानों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
2: सहकारिता मंत्रालय 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सहकारिता समारोह मनाने का काम किया है। बिहार के राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2026 के तहत बिहार में भी सहकारिता नीति 2026 जल्द ही लागू है। इसको बड़ा करके 5 करोड़ करना है, इस अभियान में हम सब लोग जुड़े हैं। चूड़ा का प्रोसेसिंग करना है, पेट्रोल पंप खोलना है, गैस एजेंसी खोलना है, जैसे और भी कई कार्य करने के लिए पैक्स को प्रेरित करने का काम किया जाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भारत सरकार की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार 4 से 9 जुलाई तक स्वर्गीय खामेनेई के जनाजे और उन्हें दफनाने की रस्म की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के विस्तार ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बना दिया है। तेलंगाना के मेडचल में विकसित भारत स्टूडेंट कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि तकनीक के इस दौर में राजनेताओं को भी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।
2: जब कंप्यूटर आया, अवेयरनेस की दुनिया आगे आई, तो आज हर व्यक्ति अपने राइट के साथ साथ, अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने राइट के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गया है, और अवेयरनेस ने निश्चित रूप से लोगों को जागरूक किया है। तो हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको अब ये अधिकार नहीं है कि हम कुछ कह दे और जनता भूल जाए। जनता याद रखती है और सही समय पर चोट भी करती है, और ये मुझ पर भी लागू है, यानी भाजपा पर भी, और ये सभी दलों पर लागू है।
1: राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधुबनी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है। साथ ही शहर में BSNL सेवा भी प्रभावित हुई है। रोहतास जिले में आज दोपहर बाद हुई भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल समेत कई प्रमुख कार्यालयों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत धौरी गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किशोरी की मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। विधानसभा अध्यक्ष नगर के ऐतिहासिक लाल

0: चौक भी गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सभी को आकर्षित और प्रभावित करती है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान ये सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर आज सुबह दो चारपहिया वाहनों के आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह आगलगी की घटना में 50 लाख रूपये मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। किशनगंज के बहादुरगंज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी में शामिल गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारे गांव में कल हुई एक युवक की हत्या के मामले में दो नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। सीवान के कचहरी दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किया गया हार बरामद कर लिया गया है। कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शरीफगंज में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जहानाबाद जिले के 41,713 किसानों के बैंक खातों में 8,34,26,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की।

0: गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसानों को खरीफ फसलों की बुआई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि निवेश की व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों से EKYC और भू सत्यापन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी कराने की भी अपील की, ताकि भविष्य में उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित जन सहयोग सह जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 121 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया तथा 702 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, श्रम, शिक्षा, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के घर के निकट उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने जिलावासियों से अपील की है कि वो आगामी शिविरों में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें तथा केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ओर से सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं में महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों के प्रति सजग रहने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से सहायता लेने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण अर्थात संबल योजना के अंतर्गत आयोजित प्रखंड स्तरीय जन सहयोग सह जन कल्याण शिविर में 6 दिव्यांग जनों के बीच निःशुल्क बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरण उपलब्ध होने से दिव्यांग जन शिक्षा, रोजगार तथा दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक सुविधा के साथ भागीदारी कर सकेंगे। लाभार्थियों ने भारत सरकार के इस प्रयास के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे उनकी आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति, नमामि गंगे, खेल विभाग, महिला विकास निगम तथा जिला आयुष के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय खेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षक अमर कुमार ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव भी कम होता है और व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। जहानाबाद जिले में मुहर्रम शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया तथा लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ड्रोन वीडियोग्राफी और CCTV कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा दल, अग्निशमन वाहन तथा जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रखा गया था। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिलेवासियों, विभिन्न अखाड़ा समितियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग की सराहना करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गजल नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में।

104 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का ई मनपसंद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आज आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आपसे मिलकर तो वैसे भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। आज भी हर बार की तरह खुश हैं और बहुत खुशी हो रही है कि हम आज आपके बीच में बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और खुश इसलिए भी हैं दोस्तों कि आज मौसम बहुत सुहाना बना है जहां हम बैठे हैं, यानी शहर सासाराम का। ये शहर सासाराम कल तक तप रहा था दोस्तों, लेकिन आज ईश्वर की कृपा हुई, बादल आए, हवाएं, झमाझम बारिश, बहुत मजा आया। तो आइए इसी मस्ती में हम और आप मिलकर शुरू करते हैं कार्यक्रम ई मन पसंद।

0: ठंडी हवा
1: ठंडा काली घटा।
2: हाथी मेरे साथी फिल्म के इस गाने को सुनवाने के लिए हमें मेल किए हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल।

मंजिल नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलिर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान निकहत परवीन।

और आप हैं ग्राम खरवत से मोती माला, नीलम देवी, ट्विंकल रानी, अमन राज, हरि दयाल सिंह और लखन बैठा।

और अब बारी है हमारी इन श्रोता दोस्तों की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाहणकर, राही श्रीमती सरिता ग्वाहणकर, प्रणीता सिद्धांत ग्वाहणकर, अर्जुन ग्वाहणकर, टुक टुक आप लोगों की पसंद है मस्ती फिल्म का ये गीत।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में अगला जो गीत है, अगला जो नगमा है, वो बिल्कुल मोहब्बत से लबरेज नगमा है और इसे सुनवाने का आदेश जिन श्रोताओं ने हमें किया है वो भी निश्चित रूप से प्यार और मोहब्बत से लबरेज होंगे, क्योंकि अपने बेशकीमती लम्हों में से कुछ लम्हे निकाल कर आकाशवाणी सासाराम के लिए हमारे लिए निकाल कर हमें मेल करते हैं, और मेल ही नहीं करते बल्कि सुना भी करते हैं। तो ज़रूर आप भी मोहब्बत से लबरेज हैं और मोहब्बत से लबरेज इस नगमे को आप तक हम पहुंचाएं, इससे पहले हम भी कुछ प्यार की बातें करना चाहते हैं आपकी इजाज़त से। कहना बस यही है दोस्त कि तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी हर अदा मेरी जान बन गई, जो भी मांगा था रब से दुआ में वो तू बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। तुम्हारे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं, तुम्हारी याद के बिना कोई पल गुजरता नहीं, तुम मेरी दुआ भी हो मेरी खुशी भी, तुमसे बढ़कर इस दिल को कोई मिलता नहीं, है ना। और ऐसी बातें जब दोस्तों हो तो मामला मोहब्बत की ही बनती है ना। अगर इतना भी कहने से दिल नहीं भरा तो बस प्यार में कह देते हैं, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, क्या बात है। आइए इसे आगे तरन्नुम में सुनते हैं।

इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और नजमुल हुदा, एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम गुमला झारखंड से। और इसके लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन श्रोताओं ने भी, फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित।

और अब आइए हम आपको सुनवाएं फकीरा फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। इसी गाने को सुनना चाहते हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड़ी भगत। और ये मेल आया है

टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। इसमें नाम है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चिन्नू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोता दोस्तों, कभी कभी आपका नाम शामिल नहीं हो पाता है या आपके ख्वाहिश के गाने आप तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पहुंचाना चाहते। बस समझ लीजिए, हम मजबूर होते हैं, यानी बहुत मजबूर होते हैं। बहुत मजबूरी में ही हम ऐसा कर जाते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। और वैसे में जब आप गुस्सा करते हैं तो कसम से, जितना प्यार से आपका प्यार हमें स्वीकार है, उतना ही प्यार से, उतनी ही मोहब्बत से आपका गुस्सा भी। लेकिन 100% कोशिश यही रहती है कि आपका नाम आपकी ख्वाहिशों के साथ हम जरूर शामिल कर दें। आगे भी हम यही प्रयास करते रहेंगे। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये मेल लेते हैं जो नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आया है। इसमें नाम है पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान इंग तागड़े और आशीष मुरहेकर, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण, जयश्री और दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आप सबों की पसंद है नाइट इन लंदन फिल्म का ये गीत।

और अब बारी है हमारे इन श्रोता दोस्तों की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और इनके ढेर सारे दोस्त। आप सबों की पसंद पर पगला कहीं का फिल्म का ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं।

जन्म बदल जाए, वक्त बदल जाए, पर मेरी मोहब्बत हर बार तुझ तक ही आए। सात जन्मों का नहीं, हर जन्म का साथ चाहिए, जिंदगी चाहे जैसी हो, बस तेरा हाथ चाहिए।

भीगी पल के फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल।

इसी गाने को हमारे ये श्रोता भी सुनना चाहते हैं। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, मोतीलाल, ओमराज, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से, और आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, करणवीर हाउस भूचो कैनचिया भटिंडा पंजाब से आप हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर बरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम दमन और अभिजीत।

और अब बारी है हमारे इन श्रोता दोस्तों की। जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।

कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी सावनकर और राकेश ऋषिता। इस गीत को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जमा मस्जिद रोड गोगवा से हाजी इम इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी।

अभिनेत्री फिल्म का ये गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है। पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश सिंह चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा वक्ष खलीफा, और आप हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मंदेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। आप सबों की पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिनेत्री फिल्म का एक गीत, और इसी गीत के लिए मेल आया है जलालाबाद वेस्ट से। नाम है इसमें सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।

इस गीत को सुनना चाहते हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू बक्सर बिहार से। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

इस गीत को सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, वडिंग खेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, आप हैं पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, मोतीलाल ओमराज, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंभई सिलौड़ छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजाता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के।

और इसी गीत को सुनना चाहते हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बींदे सीता मुनि देवी लालसा कुमारी काजल कुमारी और प्रदुमन और प्रीतम कुमार।

इसी के साथ फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम ईमन पसंद यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग

0: राष्ट्रपति पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य

0: प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए 54 पैसे पर

0: हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा, वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीलेश्वर मिश्रा को। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये भोजपुरी लोकगीत।

इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदगी।

अमीर हाशमी के गाए इस कव्वाली के साथ ही बंदगी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे भी कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

चूंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सर और इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे

साक्षात यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुमा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊँगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग।

तन्हा तन्हा एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मीना रोहसा और अजय अली की आवाज़ों में। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले सुनिए कुछ संदेश।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ऐसे ना छोड़ो एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे गुरु रांधवा की आवाज़ में। और अब आइए हम आपको सुनवाएं कारी कारी एल्बम का टाइटल सॉन्ग कैलाश खेर की आवाज़ में।

किसने आधार है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

दिल लुटा दो एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ें थी। कुणाल वर्मा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी पायल देव ने। और अब इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

आईना भी थक जाता है तेरा चेहरा संवारते संवारते, आईना भी थक जाता है तेरा चेहरा संवारते संवारते, और हम थकते नहीं तुझसे मोहब्बत निभाते निभाते।

लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि आईना सच कहता है, मोहब्बत छुपाई नहीं जाती। आईना सच कहता है, मोहब्बत छुपाई नहीं जाती। जिसे दिल से चाहो उसकी तस्वीर नज़रों से हटाई नहीं जाती।

आईना रोज पूछता है मुझसे किस बात पर मुस्कुराते हो। मैं कह देता हूं तेरी यादों से ही तो जी जाते हैं।

मोहब्बत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर और सोनू निगम की आवाजों में। श्रोता दोस्तों, इस वक्त आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने, और आज आपके साथ है आपका अपना ओम प्रकाश। तो आइए दोस्तों, मोहब्बत के इस सफरनामे को आगे बढ़ाते हैं और कहते ये हैं कि मोहब्बत में मिट जाना भी एक इबादत है। मोहब्बत में मिट जाना भी एक इबादत है, जो दिल से निभाए वही सच्ची चाहत है। बदनाम हुए तो क्या हुआ इस ज़माने में, तेरे नाम से जुड़ना ही मेरी दौलत है।

मर मिटे तेरी मोहब्बत में कोई गम नहीं, तेरे बिना इस जिंदगी में कोई दम नहीं। लोग बदनाम कहते रहे इश्क को चाहे, तेरे नाम से बढ़कर मेरे लिए सनम नहीं। दोस्तों, इतनी भी चाहत के बाद कभी कभी आशिक ये कह देते हैं, ये जो मोहब्बत है बस उनका है काम, है ना।

दीवानगी की कोई हद नहीं होती, मोहब्बत कभी कैद नहीं होती, दिल से जिसे अपना मान लिया फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, है ना।

इश्क की राह में मंजिल नहीं देखी जाती, बस दिल की आवाज़ सुनी जाती। जो प्यार सच्चा हो दिल से, उसमें हर दूरी भी मिट जाती है।

0: मोहब्बत का रंग सबसे निराला होता है, हर धड़कन में बस एक ही नाम होता है, जिसे चाहो दिल से उम्र भर, वही जिंदगी का सबसे सबसे हसीन पैगाम होता है।
1: एक

और दोस्तों, आखिर ये जो चिलमन है दुश्मन है क्यों? बस इसलिए कि ये जो चिलमन है हटा भी दो जरा, दिल तो यही चाहता होगा ना, तभी शायर ने ये लिखा। चाहता होगा दिल बस यही कि ये जो चिलमन है हटा भी दो जरा, तेरे दीदार को तरसता है दिल मेरा।

नजरें चिलमन से मिली तो दिल बेकरार हो गया। दोस्तों, बात चिलमन और मोहब्बत की हो रही थी, इसीलिए हमने भी चाहा आपसे, आपकी इजाज़त से थोड़ी सी बातें कर लें। और बात बस हमें यही करनी है कि नज़रें चिलमन से मिली तो दिल बेकरार हो गया। एक पल का दीदार भी उम्र भर का प्यार हो गया।

चिलमन अगर न होती तो ये इंतज़ार ना होता, सच है ना दोस्तों? चिलमन अगर न होती तो ये इंतज़ार ना होता, तेरे दीदार का इतना खुमार भी ना होता।

चिलमन के उस पार जो मुस्कान बसी है, वही मेरी हर दुआ हर खुशी भी है।

दोस्तों ये तो शायराना मिजाज हो गया था। इसके पहले कि हम आपको जो नगमा सुनवाए उसका डिटेल हम आप तक पहुंचाएं भूल ही गए थे दीवानगी में, चलिए होश आया तो हम आपको जो गाना हम अभी सुनवा रहे थे उसका डिटेल भी हम आप तक पहुंचा दें। महबूब की मेहंदी फिल्म का वो गाना था, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब मैं ओम प्रकाश को दीजिए इजाज़त, नमस्ते।

चित्रपट तराने कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

कल सुबह आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। समय होगा प्रातः 5:53। रोज की तरह कल भी शाम रोज की तरह कल भी सुबह 7:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। पसंद आपकी आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे कल सुबह 8:20 पर। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका की प्रस्तुति होगी कल सुबह 9:10 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। पूर्वाह्न 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से कल पूर्वाह्न 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आवाज़। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी की प्रस्तुति होगी पूर्वाह्न 10:30 पर। पूर्वाह्न 10:45 पर सुनिए कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11:00 कल आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। पूर्वाह्न 11:25 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। वंदन वापिस आकाशवाणी स्टूडियो से शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। शाम 5:30 पर सुनिए युववाणी। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:00। शाम 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम किसान वाणी। आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। कल शाम 6:40 पर सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। रोज की तरह कल भी शाम 7:15 पर आप सुनेंगे गुड इवनिंग रोहतास। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम है ये। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको कल लिए चलेंगे शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या रिले किया जाएगा। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजल की का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। कल विविध भारती के कार्यक्रम कल भी रात्रि 9:30 पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। ये थी कल प्रसारित होने वाले

ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों